0: तो साला दहले का बच्चा फिर तुम लोगों पे सवार हो गया, साला चिड़ी के गुलाम हो या बास्टर्ड। हम यहाँ 25 बरस से राज कर रहे हैं और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे काम में रुकावट डाले। क्या हमसे टक्कर रहे ब्लडी स्वाइंस, हराम ज्यादा खुपे का बालास। वो साला म्युनिसिपैलिटी आदमी हमको नीचा दिखाता है।
1: जनरल कुछ समझ में नहीं आता, हम प्लान के मुताबिक जहां भी जाते हैं वो हमसे पहले पहुंचकर हाथ साफ कर जाते हैं। आखिर हमारी स्कीम का उनको पता कैसे चलता है?
0: इसलिए कि तुम सब साले गधे हो और तुम्हारी साली स्कीम गड़बड़ है।